0: ਪਿਆਰ।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजिर लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन।

ग्रोवर्स, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो। हाँ जी, ए एम।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर। रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन, विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यो हाँ जी 1674 है।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: हाँ जी जी
1: बहुत सोने जी,
2: वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस,
1: कमाल,
0: थैंक यू जी,
1: एज ऑलवेज बहुत सोना गुरमेल जी, वाहगुरु इसे तरह सोहनी सोहनी आवाज ताड़ी, सोहने सोहने गाने की कलैक्शन जी बनाई रखे, बहुत धन्यवाद तुहाडा,
0: थैंक यू टाइम देने लई,
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी सन गुरमेल जी। तो हूँ आप एक ब्रेक लैके तो फिर बाकियों के नाल गलबात करते हैं जी, ब्रेक रेडियो हाँ जी 1674 ए

0: हाँ जी, फिर इन्हें मैं डांट भी दूंगी, फिर जब अगो जब मन भी राजा बेटा देख चांडा राजा
1: चांडे
0: मैं ना खुद ही सोच रही थी, मैं क्या हूं गड्डी तो मैं भी लैनी है पर मैं अपनी बंदी नु किन्ना तंग करा, हजे बाथरूम का काम करा रहे हैं हो रहे हैं ना, क्योंकि मैं पिछले साल ही लाइसेंस लेता
2: ना, चली जान दे बाथरूम का काम।
0: फिर जी पता की है ओ तुसी पूछो ना जड़ी बंदी काम लगी
2: है ना लगदा है करी शाह जान दे बंदे नहीं ला ले कितने मिला तो चेक करके बैठा देंगे जी
0: छुट्टी बहुत कर रहे क्योंकि खुद रियलाइज कर दे की सोरी सानू 3-4 वीक क्या सिक्स वीक चल रहा है देख लो खुद अपोलोजाइज कर दे की हसी बड़ा मैं क्या फायदा चक लो साडे सबर दा तुसी कोई
2: खुशी
0: करा गे बिलकुल नहीं पर हूं मैं अपनी बंदे इना नहीं ना उदो करना की हां आवी करना भी करना
2: ग्लैडिएटर टाइप लो फिर
0: कुछ नहीं पता देखो की पता थोड़े थता सू है ना कदो कि मुंह चो की गल सच हो जाए कुछ नहीं पता है हमेशा है ना हां जी मैं ना जेडी चंगी गल इस हफ्ते अपने आप से रियलाइज की जो मैं फील किया मैं शायद तुहानू पहला भी दसिया सीगा मैं ना पहला कर दी थोड़े टाइम पहला नहीं करती डाइट नू लेके ना अच्छा नहीं नहीं तो अलग की प्रोजेक्ट है लंबा हो जाएगा कल करांगे मैं रियलाइज किया जी मैं जिदा खाना खांदी सी है ना गलती खा रही थी मतलब जिदा मैं परांठी खा रही थी ना क्योंकि टाइम में आंदा सी कोई भी संडे आना ना मैं कहना सी आवला मंडे आ रहे हैं ना इदो करूंगी आवला फंक्शन आ रहे हैं ना वीकेंड लंघ गया ना इन्हां दा फंक्शन लंघ जे ए करदे करदे करदे मैं इन्ने महीने काटे इस हफ्ते तो ना मैं सीरियसली शुरू किया है जिन्होंने कहने बेबी स्टेप डाइट दे विच ना जी इन्ना तो चंगा फील हो रहा है ना जिदा रात नूं तुसी टाइम पे खाना खा लो ना मैक्सिमम पानी ज्यादा वो डिटॉक्स वाटर ते हेल्दी डाइट कार्ब्स वगैरह घट ते उहदे च मैनूं अपनी बॉडी च भी इन्ना फील हो रहा है कि वाकई सानूं डाइट जिहड़ी हैगी है कि किन्ना सानूं चेंज कर दे मैनूं अपने आप नूं लाइट फील हो रहा है सिर्फ जस्ट अजे ना 4-5 दिन ही होए हैं इस वीक तो ही मैंने शुरू किया है ना तो मैनूं इदां लगदा हां जी मैं क्या रणजोत वीर जी नूं तां मैं क्यू ड्यूटी लानी उहनूं आपे ही बड़े इन्ने काम है कृष्णा जी तुसीं मैनूं टाइम टू टाइम पुछदे रहना
2: है
0: चेता नहीं कर रहा है ना सही ट्रैक ते जा रहे हो ना मतलब बंदे नूं फिर होर मोटीवेट मिलगी नहीं भी हदां भी दसना मैं सच दसांगी तुहानूं पर मैनूं ये बहुत चंगा लग रहा है कई बार सोच दी कि हाँ पहला क्यों नहीं किया फिर इदा हों कोई गल नहीं जब जागो तभी सवेरा
2: हाँ नहीं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, कर रहे ना आवाज तुसी कर रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है
2: नहीं सही गल है जो जेड़ा टाइम नाल जेड़ा कम होना उदो ही होना चलो थैंक यू मेहरबानी ते अपना अच्छा मैं नंबर तुहाडे को मंग रहा यार मैं वेट कर रहा है तुहाडा नंबर नहीं जाया तुहाडा ते फिर मैं एक बारी मैसेज ना कई बारी मैं गाँव लग जा तो फिर मैनू आप नू चेता भुल जांदा हुंदा मैं तां तुहानू बेनती कर रहा
1: ओके
2: चलो उन्हां चिर सुनाओ तुसीं कुछ ते फिर मैं उन्हां चिर इधर दो हथ कर ला उन्हां चिर
1: लो जी लो हुणी सुनाने थानू सुनाने क्या सुनाया आपको हिंदी सुनाओ कुछ
2: हाँ जी एनीथिंग
1: चलेगा
2: एनीथिंग
1: अरे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तुसें
2: सुनाना है असीं सुन लेना
1: हाँ जी हाँ जी इब्ने इशादा ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: फुलकारियों ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादरे ते पा दे मोहनी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, ते तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: हवेई सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। मैं तो अपना गैरी संधु सोन ड्राइवर का मुंडा पेंट रोड़का गला उस समय की गल कर लगा जो मैं कनेडा में पहली बार गया। मेरा फ्रेंड मैं कैक्टस क्लब लै गया। उसे मेरे वर्गा देसी बलैदन बीबी तो स्नैपचैट आई डी मंगता सी। मैं

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।
0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
0: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian radio station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji. 1674 AM.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Haji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Haji.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 16748.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए,
1: क्योंकि शादी भी हो सकती है।
0: सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: Jack the Yeah. थैंक यू मन्ना
1: बड़ी पारी जुली थैंक यू
2: सश्रीकाल अंकल जी नायु कृष्ण वीर जी
1: सश्रीकाल फतेह जी क्या हाल है
2: मैं बढ़िया ठीक हूं
1: मैं ठीक हूं
3: बेस्ट
1: ताड़ी भी छुट्टी हो गई यार आज
2: हां जी क्योंकि आज साड़े सारे स्कूल दी है छुट्टी
1: सारे स्कूल दी छुट्टी हो गई
3: सारे स्कूल दी छुट्टी है गुटी यार
1: हैं इदा किदा यार
3: ए कारण की
1: बत्ती चल गई
2: टीचर ने जो सियासी पर जाल पाल गया
3: ओहो ये भी ऑनेस्ट है भाई
1: हैं बत्ती चल गई बत्ती
3: हां
1: तो की सुनाओगे फिर छुट्टी वाले दिन
2: मैं कुछ नहीं सुनाना मैं गड्डियां का नाम दसना मैं स्पोर्ट्स कार्स दा
1: अच्छा हां जी दसो दसो दसो
2: लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवी बुगाटी चायरन बुगाटी बोलाइड बुगाटी वेरॉन ते मैक्लेरन एफ स्पाइडर ते पोर्श 911 Lamborghini Huracan STO

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Hanji Hanji, yoy Hanji Hanji,
3: Hanji Radio.
4: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: कहिंदी कोई चक्कर नी प्यार भी मैनू कर ली तू ज्यादा।
1: Hi, this is Arbaaz Khan and you're listening to Hanji Radio 167 4 AM.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, दिस इज आयुष्मान खुराना एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो हांजी।

0: हाँ जी
1: हाँ भाई सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी
2: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: Peace.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: ओ अक्षरा ज्वेलर दी दूजी लोकेशन है रिवर स्टोन च,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टोन विच भी तुहाडी सेवा विच।
4: चक दे इंडिया।
5: भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC महिला एशियन कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। मुकाबला बड़ा है क्योंकि 12 में से 6 टीमें सीधे 2027 फीफा महिला विश्व कप ब्राजील के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब इन ब्राजील ब्लू टाइग्रेसेस अंडरडॉग है और उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये समय है भारत के लिए अपना जुनून दिखाने का। भारत मंगलवार 10 मार्च को वेस्टर्न सिडनी स्टेडियम में चीनी टाइपे से मुकाबला करेगा।
6: इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस करियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी।

0: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।
1: आजा प्यार की होड़ी ले।
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: हमारा यार सौदा सौदा।
3: ओहो
1: दोनों डील कर
2: टाइट, वेरी टाइट।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: अज दा विचार, अज दी कहानी, हर रोज तुसी सुन दे हो शो हांजी मेलबर्न विच। तो हाड़ी डिमांड उते आओ एक बार फिर सुन दे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
2: रेडियो हांजी 1674 मास कर दे हां कि दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा। समा हो चुका अज दी कहानी दा। कहिंदे ने एक वारी एक व्यक्ति बहुती कमाई करन दे लई बाहरले मुल्क गया। भले समयां दी गल, उदों बाहरले मुल्क लोकी जांदे जरूर ही पर कमाइयां करके वापस परत पैंदे। अज वांगू नहीं कि आपां कमाई करन दे लई आउने आ ते फिर उत्थे ही घर पा के बह जांदे आ। लम्मा समा सोहणी कमाई करदा रहा, शायद छेती कित्या मन नहीं भरिया। इन्ने क पैसे लैके मुड़ जावां, कदी वी हीला नहीं पिया। हमेशा मन दे विच इह आउंदा सी कि शायद इह पैसे मुक ना जाण, होर थोड़े जिहे कमा लां, होर थोड़े जिहे कमा लां। पर आखिरकार याद आया कि घर दे विच इक बच्ची भी है, हुण तो उहदा भी विआह करना। सारा कुछ समेट के पैसा धेला वट के वापस अपने घर नूं परतदा। रस्ते दे विच मन दे विच पता नहीं किन्ने क विचार आउंदे ने, किन्ने क चा, किन्ने क मलार, किन्ने क दुख, किन्नियां क खुशियां। कदी चेहरे दे उत्ते मुस्कराहट आउंदी है, कदी अखां दे विच अथरू आउंदे ने, कदी अपने पिछोकड़ बारे सोचदा, बीते दे बारे सोचदा ते कदी आउण वाले बारे सोचदा। इसे तरह दे नाल इक लम्मा सफर तय करके आखिरकार अपने पिंड दी जूह दे उत्ते पहुंचदा। बड़ी खुशी सी कि मैं अपने परिवार नूं मिलूंगा, अपने परिवार दे नाल गल्लां बातां करूंगा ते हुण रहिंदी जिंदगी अपने परिवार दे नाल बिताऊंगा। पर बहुती वारी ओह नहीं हुंदा जो तुसीं जिहड़े तरीके दे नाल सोचिया हुंदा। अपने पिंड आके, अपने घर आके की वेखदा कि उहदी वहुटी एक नौजवान मुंडे दे नाल हाथ च हाथ पाई तुरी जांदी है। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਕਦਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਗੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਛਡਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਵਹੁਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਮੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं हमेशा अपनी धी पुत्ता वांगू शिंगार के बहर लैके आनी हाँ। मैं बहुतियां कदी बार अंदर पता ही नहीं लगन देता कि यह मेरी धी है, यह हुण जवान हो गई है। मैं कल्ली सारी दुनिया के नाल नहीं लड़ सकती, मैं कल्ली लोकां दियां मैलियां नज़रां दे उत्ते पहरा नहीं दे सकती, ते नाले मैनू भी आसरा रहिंदा। जिहड़ा भी कोई वेखदा उह सोचदा कि इहदे नाल नौजवान मुंडा तुरिया जांदा, नाल मैनू आसरा रहिंदा, लोक मेरे वल भी भैड़ी नज़र नहीं पाउंदे। ते धी दे उत्ते भी इस तरीके दे नाल मैं रखिया हुण तक कीती है। ते जिहड़ा मेरे नाल तुरिया जांदा सी उह तेरी अपनी धी आ, ते हुणे परदेसी पछता रहा कि मैं की कर देण लगा हाँ। इन्नी देर बाद मैं कमाइयां करके औखा सौखा होके वापस परत्या, ते आउंदे मैं अपने टब्बर दे नाल की कर देण लगा सां। खैर माफियां मंगियां पैरी पिया, सारे खुशी खुशी रहन लग पे। पर गल ये आ कहानी दी कि गुस्सा साडे कोलों की करवा दिंदा। गुस्सा एक ऐसी शै है जिहड़ा तुहाडे प्यार नूं पलां दे विच रफा दफा कर दिंदा, ते पलां दे विच पता नहीं तुहाडे कोलों की इहो जिहा गुनाह करवा दे कि सारी उम्र तुसीं पछताउंदे रहो। कहिंदे ने जदों भी तुहानूं गुस्सा आउंदा उदों एकदम कोई भी फैसला नहीं लैणा चाहीदा, थोड़ा चिर अपने आप नूं दे देना चाहीदा। जदों भी तुहानूं को बहुत गुस्सा आउंदा होवे, किसी भी गल्लों गुस्सा आउंदा होवे, ते कोशिश करनी चाहीदी है कि विच थोड़ा जिहा समां पा लिया जावे। कुछ पल कुछ क्षण विच सोचण दे लई रख लैणे चाहीदे ने। उन्नी देर दे विच तुहाडा दिमाग तुहानूं कोई ना कोई होर मैसेज जरूर दे दिंदा, जरूर तुहानूं दस दिंदा है कि इहदे नाल पैरलर एक होर भी सच्चाई चल रही है। बहुत ही बारी जिहड़े तरीके दे नाल तुसीं दुनिया नूं जां सिचुएशन नूं वेख रहे हुंदे हो उदां दी सिचुएशन हुंदी नहीं है, पर उह तुहाडा अपना एक नज़रिया वा, ते अपना नज़रिया हर एक नूं बड़ा वधिया लगता, बहुत सोहना लगता, बड़ा चंगा लगता। अपने नज़रिए दे उत्ते बंदा पहरा देण दे लई बड़े सच्चियां दे नाल भी भिड़ जांदा, ते अपने नज़रिए नूं साबित करन दे लई कई वारी वड्डी तों वड्डी कुरबानी भी वड्डे वड्डे थावां दे उत्ते भी सिर अड़ा दिंदा। अपना सारा कुछ भी लोक गवा देंदे ने अपने नज़रिए नूं साबित करन दे लई। इस करके वह समा जदों तुहानूं गुस्सा आउंदा वा उदों थोड़ा जिहा टल जाणा चाहीदा। उस समय कई वारी आपां कई सारे मसलियां दा हल करन दी कोशिश करदे हां, उस समय आपां गलबात करदे हां, जो कि गलबात फिर बहुत अगे तक वध जांदी है, गाली गलोच दे विच तब्दील हो जांदी है, साडे चिरां दे रिश्ते तबाह हो जांदे ने। उस समय दे विच आपां अपने रिश्ते खराब कर लैंदे हां, यारियां दोस्तियां खराब कर लैंदे हां, कारोबार दे विच कोई बनदी बनदी डील दे विच विघन पा लैंदे हां, ते किसी एक जां दो दे नाल नहीं लगभग हर एक दे नाल हुंदा। ते जिहड़ा कहिंदे ने इस तरीके दे नाल गुस्से दे उत्ते अपने काबू करना सिख गया उहदे फिर वारे न्यारे ने, उह बहुत सारा कुछ होर भी सिख जाऊगा। उह फिर थोड़ी कीतिआं कितें भी जिंदगी दे विच घाटा नहीं खांदा। सो ये कहानी जिहड़ी सानूं दसदी है कि जदों भी कितें तुहानूं गुस्सा आउंदा ते थोड़ा भाई विश्राम ला के कोशिश ये जरूर कर लिया करो कि उहदे पिछे सच्चाई कुछ होर ते नहीं है। आस करदे हां कि कहानी तुसीं पसंद कीती होएगी।
1: अज दा विचार, अज दी कहानी, हर रोज तुसीं सुनदे हो शो हां जी मेलबर्न विच। तुहाडी डिमांड उत्ते आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों वी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बांसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां।

0: हावे सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी
1: यू आर लिसनिंग
2: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन
2: रेडियो हांजी
1: स्टे ट्यून्ड।

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे। एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, बिकॉज हमें समझ में आ गया कि आई एम द एक्टर एंड दिस इज माई रोल। लेकिन एम आई कॉन्शियस वाइल प्लेइंग द रोल?
0: आई थिंक नेवर। और यहां से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चेंज, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही।
1: सो वन इज ऑल दीज रोल्स दैट आई प्ले, लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं हस्बैंड था, मैं फादर हूँ, मैं कल को ग्रैंडफादर भी बनूंगा, ऑल दीज रोल्स दैट आई प्ले, इसमें भी आई प्ले रोल्स। यू सी, रोल मीन्स कि हर सीन जो आई उस सीन में मैंने कैसे इनैक्ट किया, दैट इज माई रोल इन दैट पर्टिकुलर सीन। अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूं। आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से। क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेज आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है, इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूं वो किस पर बेस्ड है,
0: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उस पर।
1: सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस।
0: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
1: राइट? तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है, जिसके लिए हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ। नाउ इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
0: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
1: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूं और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल, मैं उसको प्ले कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माय थॉट, सिचुएशन आई, मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
0: मेरी अपनी चॉइस है,
1: मेरी चॉइस है। सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
0: द वे आई वांट
1: टू डू इट।
0: बट वी ऑलवेज से द डायरेक्टर इज वन,
1: हु इज द डायरेक्टर,
0: ही इज डायरेक्टिंग, यू नो।
1: नाउ अगेन वी अंडरस्टूड व्हाट्स गॉड्स रोल। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूं, या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है?
0: नहीं, दैट इज नॉट देयर,
1: दैट इज नॉट देयर। सो आई कैन नॉट से ही इज क्रिएटिंग द रोल फॉर मी, He can give me the wisdom and the power, लेकिन who creates my role?
0: I create
1: my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस awareness के साथ चलूं कि scene after scene, I not only play the role, but I create the role.
0: I create the next situation, I create the, and I start acting it that way. I can act this way.
1: हाँ, see ना?
0: हाँ.
1: Fixed नहीं है. हर situation में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक सीन है. You can act this way. There will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं. इसका मतलब, as an actor, आपका role fixed नहीं है. आपके पास choice है कि आप किस तरह से उसको enact करना चाहते हैं. आपकी script already
0: लिखी हुई नहीं है.
1: This is a very big thing. ये बहुत बड़ी realization हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे.
0: ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल. ओनली द सिचुएशन कम्स. अगर आप थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, इट्स ओनली द सिचुएशन, देन हाउ आई हैंडल इट, इट्स माय चॉइस.
1: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सारा.
0: इट्स अमेजिंग.
1: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइन्स पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है. नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है, और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले डिफरेंटली,
0: बट आई कैन देन टेक द प्ले इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन.
1: एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाई वी सेड यू क्रिएट योर डेस्टिनी. व्हेन वी सेइंग आप अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स यू कैन टेक द प्ले
0: इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, इनटू अ डिफरेंट, ओह कंप्लीटली
1: डिफरेंट, बेस्ड ऑन हर सीन में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे. अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा, तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया, वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया, उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया, उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस, माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
0: इनफैक्ट इससे पता है क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
1: इन द प्रेजेंट.
0: यस.
1: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट, प्रेजेंट में कैसे जीते, पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें. लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, डू यू नो, आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब, आप बिल्कुल कुछ और सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट? लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहां जाना है या यहां जाना है, यहां जाना है, फिर यहां टर्न करना है. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे. लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा जर्नी की, लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में जर्नी कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप सीन्स में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन I am not there because I am not needed there. Because मैं अपना response choose ही नहीं कर रही. Fixed किए हुए responses. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है. तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ. कुछ और सोचते तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया रोल and my choice how to play. Par time hai, past aur future ke bare mein sochne.
0: No, that's what I'm saying. Then, you know, like awareness mein phir hum active rahenge. Hum actually, you know, all hamare senses jo hain, wo tayar rahenge ki how can we innovatively do it.
1: Absolutely. To phir jo baat ho rahi hai bar bar, how to be in the present moment. You know, the question is ki har ek ko ye pata hai ki past or future is waste of time and energy. Lekin how to do it? क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो, काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस अवेयरनेस डिसीशन एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहां की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट कि एवरी मिनट अवेयरनेस हाउ टू चूज द रोल. जीवन कैसे हो जाएगी. एंड मेन चीज उसमें जो आएगी, इट विल बिकम फन.
0: इट विल बी एक्साइटिंग.
1: इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ
0: फन. एक वो थकान से हम भर चुके होते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू डू. देयर इज नथिंग.
1: अगर आपको मोनोटोनस काम करना हो तो उसके एंड ऑफ द डे कैसे फील होगा?
0: वेरी टायर्ड.
1: लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो, यू एंजॉय. आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन एंड येट यूल से मोर.
0: आई कैन ऊर्जा बची रहती है
1: क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल. हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पज ऑफ लाइफ है इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस. लेकिन वो कब होगा? व्हेन आई एम क्रिएटिव. कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है. तो अपने रोल्स को देखें. आज क्या हुआ? हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया. हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल. टुमोरो पूरा दिन बिताएं, आई हैव टू क्रिएट द रोल, नॉट प्ले द रोल. प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है. आई हैव टू प्ले इट. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं. एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, I am going to respond only in that very fixed, rigid way. And क्योंकि flexibility नहीं है, creativity नहीं है, मेरी अंदर की जो अनुभूति है, जो experience है, it's going to be very, because stagnant हो जाएंगे. हम वही चीज, you know, same चीज रोज play कर रहे हैं. तो आप life को जो enjoy करना है, इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है, चल रहे हैं, हो रहा है, enjoyment वाली feeling, excitement वाली feeling. नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापस आना. मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए. यू नो दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर के कुछ चेंज चाहिए. चलो हॉलीडे पे जाके.
0: हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं. जनरली अगर हम देखें
1: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो वी लुकिंग फॉर अ चेंज. लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे, यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे. बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग. हर रोज कुछ नया करना है. हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं. सी, हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं? कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो. अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती. आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे? फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना. आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं. डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And वो तब होगा कि situation नई हो वो नहीं, उसी situation में मैं कोई नया response create करूँ.
0: मैं नहीं हो जाऊँ.
1: हाँ, creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible? A creativity in a response? कि वही सिचुएशन, वही बॉस, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, बट आई विल लुक एट अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग
0: एंड आई सडनली बिकम वेरी नाइस.
1: व्हाटएवर यू कैन
0: अदरवाइज नाइस से अगर इफ आई सडनली बिकम वेरी बैड,
1: creativity, but which will give you a feeling of
0: happiness,
1: satisfaction, happiness, contentment. अभी क्या हुआ, हम बहुत सारे roles play करते हैं, लेकिन majorly हमने दो roles में अपने आप को fix किया हुआ है. One is at work, one is at home. ये दो रोल्स हैं जिसमें हम एकदम से अपने आप को टाइट पकड़ लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ढूंढते और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं. दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है. और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मजा खत्म हो जाता है. दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर. जैसे जो आपने कहा पोजिशन, यू नो, आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है. तो पोजिशन को ही रोल समझ लिया. अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ ही सेज आई एम द मैनेजर, दैट्स इट, देन वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
0: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में.
1: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूं. तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजिशन में,
0: आई हैव टू क्रिएट दैट इमेज, यू नो, आई हैव टू कंटिन्यू टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ बीइंग अ बॉस.
1: तो मैंने अपनी पोजिशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माय रोल, आई हैव टू बी द बॉस. सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूं. आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग, बिकॉज हु एम आई? आई एम द बॉस. नाउ व्हाट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस विद दिस अवेयरनेस कि यस, ये मेरी पोजीशन है, लेकिन ये मेरा रोल नहीं है. रोल कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूं, लेकिन पोजीशन बॉस की है. कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूं, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूं. कोई दर्द में है, कोई कंफ्यूजन में है, कोई दो लोगों की आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है. कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूं उन दोनों के बीच में. कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूं ऑफिस के अंदर. इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी. लेकिन अगर मैंने सोचा
0: ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी वेरी वेरी यू नो लाइक मैं बहुत फियरफुल होता हूं. मुझे डर होता है कि एक बार मैंने गिव इन किया तो वो दिल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, यू नो. मैं उनके साथ उस लेवल पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो यू नो.
1: तो दैट इज द फियर, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट. जस्ट ट्राई एंड इमेजिन कि अगर एक बॉस सिर्फ एक पोजिशन को नहीं स्टिक करके इस तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करे तो वर्क एनवायरमेंट कैसा होगा?
0: वेरी स्मूथ एक्चुअली,
1: वेरी लाइट, वेरी लाइट, एंड जो आपस की सबकी बॉन्डिंग होगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. सेम विद अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. मैं फादर हूं, मैं मदर हूं सिर्फ नहीं, मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूं. अगेन अ पेरेंट कैन बी अ काउंसलर. हमें स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत है? हमें स्कूल में, हाउ कैन वी नीड अ काउंसलर इन स्कूल? एक पेरेंट एक काउंसलर हो सकता है, एक पेरेंट एक फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट एक मोटिवेटर हो सकता है. लेकिन अगर वो सिर्फ पेरेंट है देन बहुत रिजिडिटी आ जाएगी.
0: इन फैक्ट पेरेंट एक टीचर हो सकते हैं.
1: पेरेंट एक टीचर हो सकते हैं.
0: अलॉट, यू नो, कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा हमसे नहीं पढ़ता है इसीलिए मुझे एक ट्यूटर चाहिए, कि मुझसे तो पढ़ेगा ही नहीं, मेरी तो बात ही नहीं सुनता वो. मतलब इट्स अमेजिंग.
1: एंड टीचर नॉट नेसेसरी ओनली इन सब्जेक्ट्स बट टीचर इन सो मेनी थिंग्स. आजकल हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे यू नो इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, वी नीड टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. दिल से दैट इज द रोल ऑफ द टीचर, दैट्स द रोल ऑफ द स्कूल. वाई इज दैट नॉट माई रोल? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे स्कूल में भेज दिया, बाकी सारा काम वहां होना चाहिए. तो कल अपनी पोजिशन से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूं और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है. तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के. दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन और यही बना के रखना.
0: अच्छा, ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है. ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अनडू करने की कितनी जरूरत है?
1: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ्स, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजिशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग, वो नहीं था, तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा। वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे, बट नो, इट्स द सेम थिंग, आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज, एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे हम उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी एंजॉय करेंगे। क्योंकि आज आप देखो, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर एक बच्चे की कोई भी इश्यू है वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है। वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
0: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो वॉट, समवेयर पेरेंट घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतनी फोन पे बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है। यू नो, यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका। आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता।
1: Now this is creativity. तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है, नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो, नॉट नेसेसरी, उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील। लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट बट आई एम क्रिएटिंग द रोल। हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, How do I want to create my role in this scene? तो आपको कैसे भी सीन मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी सीन मिले, तो you still have a choice. It's again going back to that fundamental line, I have a choice. हर सिचुएशन में आई विल चूज हाउ टू प्ले द रोल। सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ट्राई, पोजिशन कॉन्शियसनेस नहीं, एक्टर कॉन्शियसनेस, कि मैं एक्टर हूं, आई एम प्लेइंग द रोल। दूसरी रीजन जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते, इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
0: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपने, मेरा कर्तव्य है ये।
1: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो,
0: यही मैं हूँ।
1: तो यही मैं हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे क्योंकि यही मैं हूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता। आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट,
0: एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल, यू नो,
1: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट, एंड डिटैच्ड होकर जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी
0: अच्छा
1: ज्यादा होगा। जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है। देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स है मेरे मन में उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव। इफ लेट्स से माई आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूं, अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं, यू नो, कहीं ये मुझे, जैसे आपने कहा, फॉर ग्रांटेड ना ले लें, तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज, प्लीज रिमेम्बर, यस, प्लीज रिमेम्बर हु एम आई, आई एम द बॉस एंड यू बेटर टॉक टू मी जस्ट लाइक अ बॉस। सेम विद द पेरेंट एंड अ चाइल्ड, पेरेंट इमीडिएटली वो सिग्नल कन्वे करेगा बच्चे को, यू प्लीज रिमेम्बर I am the parent. That doesn't mean कि हम rudeness आने दें या you know misbehavior आने दें, लेकिन कोई हल्कापन, एक you know lightness relationship के अंदर, that's a part of the, you enjoy that relationship. लेकिन जहां हर relationship को उतना tightness से पकड़ा कि ये how could he talk to me like this? How could he behave with me like this? Because who am I? I am this. तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है, जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी।
0: इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बींग
1: विद दोस पीपल, यस, एब्सोल्यूटली,
0: आप उनसे कन्नी नहीं काट रहे होते बिल्कुल।
1: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माई क्रिएटिविटी, इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन।
0: और जहां जहां थोड़ी मुश्किल भी है वहां पर, मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ.
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है, लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ. Make it creative. Create a beautiful new thought उस आत्मा के प्रति. Just go and enact it the way you never thought you could have done it. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे, तो मैं ठीक से क्यों बात करूं? Fixed way of acting the role. कल मैं सोचा, come on, forget all this.
0: Concentrate on your performance.
1: Let me go and play it in a way that even I will surprise myself. मैं आपको क्या सरप्राइज करूं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. That is creativity.
0: And concentrate on your performance.
1: Only my performance. वैसे भी आपके performance पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं सिर्फ complain कर सकती हूँ या judgmental हो सकती हूँ. But if I just focus on mine, you see how much fun we are going to have in the whole day.
0: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
1: Yeah. Spirituality is a lot of fun.
0: Yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baatcheet ke liye. Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: Ab apne roles पर काम करना शुरू करें. आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है, अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू गिवन द पंच लाइन, कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित कर दें, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अब एक विद ड्रामा कुमारी में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद दामा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: थैंक
1: यू ते बॉडी पार्ट दिन वधिया रहे ते मन्नत फतेह की हाल चाल है तुहाडा किथे जे हैलो
2: हैलो हैलो
1: ओ फतेह सिंह
3: चलो
1: फिर तुम बाद चारी दे फिर जेड़े बच्चे पहला स्कूल जाने उन्होंने पहला बवाली देने चलो
2: गुड आइडिया
1: मैंने लगता है अमृताज ने जाना आज आज स्कूल
3: मम्मा ने तेनु मैसेज किता सीगा पर तुसी मैनु लादा देखया नहीं
2: हां एक तना अंकल जी देखते नहीं
1: आ मैसेज आज मैसेज वाली थोड़ी जी चल रही है खराबी है मैं इस करके ना देख नहीं सका चलो ते अंबर गुरबाज तुसी आने रहो वेरी गुड है
2: ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ
1: ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਮਰ
3: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
2: ਲੋ ਔਨ એનર્ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ
1: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ
3: ਹਾਂਜੀ
1: ਓਈ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ
3: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
1: ਓਕੇ ਟੀਚਰ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਓ
3: ਹਾਂਜੀ
1: ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ
2: सुनाओ जी सुनाओ

0: थैंक यू ना,
1: बड़ी पारी जुली, थैंक यू।
2: सत्रीकाल अंकल जी, नारी कृष्ण वीर जी।
1: सत्रीकाल फतेह जी, क्या हाल है?
2: मैं बढ़िया, ठीक है मैं।
1: आज भी ठीक है
3: यार, बेस्ट।
1: ताड़ी भी छुट्टी हो गई यार आज?
2: हाँ जी, क्योंकि आज साढ़े सारे स्कूल दी है छुट्टी।
1: सारे स्कूल दी छुट्टी हो गई?
3: सारे स्कूल दी छुट्टी है, घोटी यार।
1: हैं, इदा किदा यार?
3: ए कारण की?
1: बत्ती चल गई।
2: टीचर ने जो सियासी पर जाल पाल गया।
3: ओहो, ये भी ऑनेस्ट है भाई।
1: हैं, बत्ती चल गई, बत्ती।
3: हाँ।
1: तो की सुनाओगे फिर छुट्टी वाले दिन?
2: मैं कुछ नहीं सुनाना, मैं गड्डियां का नाम दसना, मैं स्पोर्ट्स कार्स का।
1: अच्छा, हाँ जी, दसो दसो दसो।
2: लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर एसवी जे। लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर एसवी, बुगाटी चायरन, बुगाटी बोलाइड, बुगाटी वेरॉन, ते मैक्लेरन एफ स्पाइडर, ते पोर्श 911, ते लैम्बोर्गिनी हरकान एसटीओ।

0: मुंबई सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: रेडियो हां जी 1674
4: हुण थोड़े मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा The smart choice।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: Lint नहीं चाहता है कि आपका बकाया टोल आपकी रफ्तार को धीमा करे. इसीलिए हमने NSW गवर्नमेंट के साथ मिलकर बकाया टोल प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं. अब हम डाक की जगह समय रहते डिजिटल रिमाइंडर भेज रहे हैं. साथ ही टोल नोटिस पर लगने वाली एडमिन फीस भी हटा दी गई है ताकि भुगतान करना आपके लिए आसान हो सके. जुर्माने का जोखिम न उठाएं. आज ही लिंक्ड टैग अकाउंट खोलें और अपने बकाया टोल का जल्दी समाधान करें. अधिक जानकारी के लिए देखें linked.com.au/nswtolls.